0: पहला सुचा होए सुचे बैठाया आए सुचे अगे रखियो हुन कोई ना पिटियो जाए सुचा होए कै जे ब्याह लगा पड़न सलोक बहुती जाए सटिया किस एहो लगा दुख आन देवता पानी देवता वै संतर देवता लू पंजवा पाया किरत ता हुआ पाकवित पापी स्यों तन गड्या चुका पईया चित जित मुख नाम ना उचरे बिना वैर सखाखे नानके वै जानी है जित मुख ठुका पाहे महला पहला
1: पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण व्याहो पंड होवे दोस्ती पंड हो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा।

0: नानक पिके बोलिए तन मन पिका हो पिको पिका सदिया पिके पिकी सोए पिका दरगे सटिया में टुका पिके पाहे पिका मूर्खा किए पाणा लह सजाए महला पहला
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीरथ जे ना वह उतरे ना ही मैल जिन पटत नर बाहर बुद्धर तेपले संसार तिन्ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हस है रंग रोव है चुप कर जा प्रवाह ना ही किसे केरी बात सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कलमे कहा मा तुम्हें दार ले लेखा पीड़ सुट

0: देखे कि ता अपना तर्क चिपकी सारी है, जो आया सो चल सी सबको आई बारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साय मनोविसारी है, अपन थी अपन आपे ही का सवारी है, आपे ही काज सवारी है।
1: हम कुकर

जिससे वे है सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है। जिद कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है। मंदा मूला गिरचे दे लंबी नदले हाली है। जो साहिब नाला हारी है ते वेहा पासा ढाली है। किस लाहे उपर काली है, किस लाहे उपर काली है।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहिं जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीह कश कही न जाई सोडी सृष्ट सकल तारण का अब गुर रामदास को मिली बड़ाई ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे शतर तरे जाकी शोत जगत को लागे तो पर तुही टरे नीचे ऊच करे मेरा गोविंद कहू ते न डरे नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे कह रविदास सुनो रे संत हो हर जियो ते सब सर नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे कह रविदास सुनो रे संत हो हर जियो ते सब सर सुख टल गुर सेविय एहन
ਇਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ

हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत्त विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मिले आपे, हर आपे झगर चुकावे। हर आपे पंच तत्त विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मिले आपे, हर

तत महत दिसरा दोय दाई दाया खेला सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाच धर्म दूर करमी आपो अपनी के दू जिनी नाम त्याया गए मशक्त काल नानक ते

सुख रोग पया जा सुखताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंतना जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सित सवाल जिन कीती सो पार।

न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप आपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तोहे तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केहो विद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगादे स्वरूप स्वयं पव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तोज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तोमा संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह आए है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छुए सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोखते रहा, खड़ग केत मैं सारण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दोस्त

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ।

गोविंद दास तोहार, राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिने वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, कर ता तेरा सब किछ है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वस्या, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो। जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनहो संतहो। शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे। कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वास कीते। काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ। से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ। तित कर अनहद वाजे, आनद सुनहो वड भागी हो। सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे। सुने

बोलो जे पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी।

पत दा रखां आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दादान खालसा जी नूं बख्शां हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे ताण ने ओटिया दी ओट धन धन श्री

हर आपे पंच तत् विस्थारा विच तत्तु पंच आप पावा जान नानक सतगुर मिले आपे हारे आपे झगर चुकावा हारे आपे पंच तत् विस्थारा विच तत्तु पंच आप पावा जन नानक सतगुर मिले आपे हारे आपे झगर चुकावा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमी। नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे पात सा, मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात सा। सिर साहांद जिस पास बैठिया, सोही सबनांदा। सजन सचा पात सा, सिर साहांद जिस पास बैठिया, सोही सबनांदा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। तिलंग महला पहला, घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पौ तेरा भांग, खलड़ी मेरा चीत। मैं देवाना भया अतीत,

परातीतं कारकासा दर्शन के भूख मैं दर मांगो नीता नीत तो दर्शन की करो समाए।

चंदन भगता जोत अनेही सर्वे परमल करुणा के पट पांडा कह न कोई ऐसा भगत वर्ण में हो तेरे नाम निवे रहे लिवलाई।

माता तर तुम हत दिवस रात दुए दाई दया खेले सगल जगत चंगियाँ या बुरियाँ या वाच

गुरु रामदास, गुरु रामदास रखो सरनाई। तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे ढूंढे सराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागे वार महला दूजा
1: जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन हुंदियां गुरबिन को रंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बवाड़ जो सुंजे अंदर खेत

उड उड़ावा चाटे पाए वेखे लोग हसे कर जाए। रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल। गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निरभाओ निरंकार सच नाम जहाँ का किया सकल जहान। सेवक सेव है कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ। सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत अनंत। लाटू मधानिया नंगा पंखी पाउंदिया लैन ना साह। सूए चढ़ पवाइए जंत नानक पाउंदिया गंत ना अंत। बंधन बंद पवाए सोए पया किरत नचे सब कोए। नाच नाच हसे हे चले हे से रोए उड़ना जाही सिद्ध ना होए। नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी नौ त्र।

कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए, पौड़ी सेवक ती संतो।

कह रविदास कवन गत मोरी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूध ता बछरै थनहो बिटारियो फूल भवर जल मीन बिगारियो।

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथ आरियाए। तो देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी

0: संजम कृपा पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मान सुखाने करे नवाज शुरी बगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवे ओई साथ कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथा टिका तेर धोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश तान लै पूजा है पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर कसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे एहुआन साडा फिटे तन फिटे फेट करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाई पौड़ी चित